अपनी ही बातें निगाह से पूछा, पूछो फिजा से पूछो, तुम अपनी ही बातें निगाह से पूछो, कथा

दुपट्टे हजारों तो देखे हैं मैंने, मगर कोई ऐसा दुपट्टा नहीं है। दुपट्टे हजारों तो देखे हैं मैंने, मगर कोई ऐसा दुपट्टा नहीं है। नीले दुपट्टे, पीले दुपट्टे।

डस्टबिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।